0: और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने दायरे में तैर रहे हैं।
1: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك

0: आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें।
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ

वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज्क उतारता है, और नसीहत तो वही पकड़ता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की इबादत को खालिस कर कर उसी को पुकारो अगरचे काफिर बुरा ही माने। वो मालिक दर्जात आली और साहिब अर्श है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। आज किसकी बादशाहत है अल्लाह की जो अकेला और गालिब है।

ये बहुत से तो अगले लोगों में से हैं और बहुत से पिछलों में से, और बाएं हाथ वाले अफसोस, बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में हैं, यानी दोजख की लपट और खौलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साए में, जो न ठंडा है न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐशे नईम में पड़े हुए थे और गुनाह अजीम पर अड़े हुए थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और पिछले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे।

उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां फिरे जाते हो।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न इसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते। बल्कि ये रोशन आयते हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और काफिर कहते हैं कि उस पर उसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। क्या उन लोगों के लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है।

जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसा पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसा न होगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे, उस रोज गुनाहगार ख्वाहिश करेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था।

0: कौन?
1: क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था, और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़ कर उनसे आग निकालते हो।

और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है।